How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। क्यों बार बार मेरे करीब आने की कोशिश करते हो? दूर रहो मुझसे।

0: Attitude, huh? What does he think of himself? Just go tell him who I am.
1: आँखों में डूब जाने को हम बेफरार बैठे हैं, एक पल में सब लुटाने को उस पे ही यार बैठे हैं।

धुमधाम राति धुमधाम राइट सपन नयाँ इभी मेरो टियागो इभी सँग लाइट छ सुपर फन. Elders love it, so do the young. It's safe.

मजाम कति धुमधाम राइट सपन नयाँ इबी मेरो दिया गोबीसँग लाइफ छ सुपन Elders love it, so do the young. It's safe, it's playful, gas.